0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबेद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। होशियार, खबरदार, कल फिर छुट्टी।
2: हाँ जी, पीर 12 अक्टूबर को कौमी तातील है ना।
1: 1964 के टोक्यो ओलंपिक की 10 अक्टूबर को मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब का दिन 1966 में खेलों का कौमी दिन करार दे दिया गया था। उस वक्त इस दिन को ताइको नोही कहा जाता था
0: और बाद में कानून में तरमीम से 2000 से इसे बदल दिया गया और फिर अक्टूबर का दूसरा पीर खेलों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। फिर इसके बाद एक और तब्दीली हुई 2020 में, जब इस दिन को ताइको नोही से बदलकर स्पोर्ट्स नोही कहा जाने लगा।
2: इसी मुनासबत से अमूमन हर खिजा में कई जापानी स्कूलों में इस दिन खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जिसे उन्दो काई कहते हैं।
0: खलील साहब, ये उन्दो काई बड़ा ही दिलचस्प इवेंट है। बच्चे तो मश्क करते ही हैं, लेकिन चूंकि रैले रेस और रसाकशी जैसी कुछ गेम्स में वालदैन और बच्चे मिलकर खेलते हैं, तो कई वालदैन भी बड़ी तैयारी करते हैं।
1: अच्छा,
0: हमारे जानने वाले एक साहब कहते थे, बल्कि एक वालिद कहते थे कि नाक की सीध में तो दौड़ लेता हूँ, लेकिन रैले रेस में पूरी ग्राउंड का चक्कर लगाने की उन्हें खास मश्क करना पड़ती है।
2: अच्छा, उन्दोकाई के लिए तलबा की दो टीमें बनाई जाती हैं, अमूमन एक सुर्ख और एक सफेद टीम।
1: हमारे अमले की जापानी रुकन हारूने इनाका बताती हैं कि कुछ इलाकों में तलबा अपने रिवायती इलाकाई रक्स भी करते हैं
2: और वो कहती हैं कि उनके आबाई इलाके ओकिनावा में आमतौर पर खेलों के दिन तालिब इल्म ओकिनावा का रिवायती रक्स ऐसा पेश करते हैं। ये तलबा के लिए मकामी सकाफत को समझने और फरोग देने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल दुरुस्त। हारूने साहिबा बताती हैं कि जब वो प्राइमरी स्कूल में थीं तो उन्दुकाई के मौके पर पूरा खानदान खेल देखने आता, सब मिलकर घर का बना खसूसी लंच खाया करते थे।
0: हाँ, वो भी जब प्राइमरी स्कूल में थी तब की बात कर रही हैं और मेरे भी बच्चे अब बड़े हो गए, लेकिन ये यादें नाकाबले फरामोश हैं। वाह वाह।
1: वसीमा साहिबा, आप भी खेलती थी?
0: अरे मेरे बच्चे सुर्ख या सफेद जिस रंग की टीम में भी होते, मैं उसकी कामयाबी की मुंतजिर रहती।
2: और सबसे आसान काम लेकिन लंच भी तो बताती होंगी।
0: जी, खाना बनाना और खिलाना ही तो मेरा टैलेंट है।
2: अच्छा, आज ये नई बात पता चली भाई।
1: अरे टैलेंट से याद आया, गुज़िश्ता दिनों मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ।
0: अरे वाह, ये टैलेंट कहाँ से आश्कार हो गया?
1: कराओके जाकर।
2: अरे अलील साहब, हमारे सामीन को जरा सादा अल्फाज में बताइए कि कराओके आखिर है क्या और आप वहाँ कब और क्यों गए थे?
1: यही बताने वाला हूँ और ये सिलसिला है
0: जापान जो मैंने देखा।
1: तो हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता दिनों दो साथियों को रुख्सत करने के लिए उनके एजाज में एक अलविदा इशाइया था, लेकिन मुझे वहां पता चला कि जापान में अलविदा कहने का एक दूसरा मरहला भी होता है।
2: दूसरा मरहला? यानी दावत के बाद एक और दूसरी दावत?
1: जी बिल्कुल। पहली दावत अमूमन निस्बतन रस्मी सी होती है और इसमें लोगों की तादाद भी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी महफिल में चंद करीबी साथी शामिल होते हैं जो रुख्सत होने वाले दोस्त के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहते हैं।
0: जैसे उस पहली दावत में हम खवातीन आपके साथ थीं, लेकिन दूसरी में हम कहाँ शामिल हुईं? बिल्कुल नहीं।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो हम भी कुछ नौजवान साथियों के साथ हो लिए कि देखते हैं कि आखिर ये कराओके है क्या भला।
0: अरे रात के खाने के बाद प्रोग्राम पता लगा इस पर ना, ये तो फिर पता क्या चला कि था क्या।
1: तो मैंने जब पहली बार इसका नाम सुना तो समझा शायद कोई कंसर्ट होगा जहां गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे और हम बैठकर दाद देंगे, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि मामला कुछ उल्टा है। गुलकार कोई और नहीं बल्कि हम खुद थे।
2: अच्छा, लेकिन पहले ये बताइए कि कराओके का मतलब क्या है?
1: अरे सादा अल्फाज में समझें तो ऐसी गायकी जिसमें असल गुलकार की आवाज नहीं होती, सिर्फ मौसीकी चलती है और आप खुद गाते हैं। कराओके जापानी जबान का लफ्ज है जिसका मफहूम तकरीबन खाली आर्केस्ट्रा बनता है। ये तफरी जापान में परवान चढ़ी और बाद में कराओके के कमरों की वजह से बहुत आम हुई।
0: अच्छा अच्छा मैं समझ गई, कराओके में गुलुकार की जगह आप खुद ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इंकशाफ था।
2: तो जरा बताइए तफसील के साथ के वहाँ पहुँच कर हुआ क्या?
1: भाई हम 5 लोग थे और खैर से बाकी सब जापानी और सिर्फ मैं गैर जापानी।
0: अरे आपने भी जापानी गाने गाए क्या?
1: मैंने तो हिंदी और उर्दू गाने गाए, बल्कि मेरे जापानी दोस्तों ने भी उर्दू गानों में मेरा साथ दिया, उन्हें उर्दू आती है।
0: अरे फिर तो हिसाब बराबर हो गया। वैसे मुझे ये बताइए कि जब आप कराओके पहुंच गए तो फिर क्या हुआ?
1: बिल्कुल, जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई, फिर पूछा गया कि क्या मशरूब लेंगे। मैंने फौरन कहा खाना पीना तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बताया गया कि कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना जरूरी है।
0: अरे एक जूस तो बनता था ना?
1: जी बिल्कुल। फिर हम लिफ्ट में अपने मखसूस कमरे में पहुंचे, वहाँ एक बड़ी स्क्रीन थी, सामने माइक लगा हुआ था और बाकी लोगों के लिए बैठने की जगह थी, बिल्कुल ड्राइंग रूम की तरह।
2: यानी पाकिस्तान की महफिल मौसीकी की तरह सब बैठकर किसी एक को सुनते हैं?
1: नहीं नहीं, यही तो असल फर्क है। पाकिस्तान में अगर दोस्तों की महफिल हो और किसी को गाने का शौक हो तो अमूमन एक शख्स गाता है, बाकी लोग सुनते हैं, दाद देते हैं और फरमाइश करते हैं। कराओके में सुनने वाला ही गाने वाला बन जाता है।
0: यानी हमारे यहाँ जो दोस्त हर गाने की फरमाइश करे उसे यहाँ माइक भी पकड़ा दिया जाता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ सिर्फ फरमाइश नहीं करनी, खुद गाना भी है।
2: लेकिन अगर गाना याद ना हो तो फिर क्या करें?
1: यही तो मजे की बात है, गाने के बोल स्क्रीन पर रोमन में चलते रहते हैं, आप उन्हें देखकर गाते जाते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीन से आपको ये भी पता चलता रहता है कि गाना आपने कब शुरू करना है।
0: यानी रियाजत की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत चाहिए।
1: हिम्मत और थोड़ा सा एतमाद।
2: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि गाने मुंतखब कैसे करते हैं?
1: भाई गानों की एक पूरी फेरिस टेबलेट या कंट्रोल पैनल में मौजूद होती है, जापानी और अंग्रेजी गानों के साथ दूसरे मुल्कों की मौसीकी भी आपको मिल जाती है, हिंदी फिल्मों के कुछ गाने भी मौजूद थे अगरचे जापानी गानों के मुकाबले में काफी कम थे।
0: और पाकिस्तानी गाने?
1: पाकिस्तानी गानों का इंतखाब भी काफी महदूद था, लेकिन दोस्तों ने बताया कि गानों की फेरिस में नए गाने शामिल होते रहते हैं।
2: तो आपने आखिर कौन से गाने गाए?
1: मैंने हिंदी गीत गाने की कोशिश की, बल्कि भरपूर कोशिश की।
0: कोशिश सिर्फ कोशिश की या वाकई गुलुकारी का मुजाहिरा कर दिया?
1: ये फैसला तो वहाँ मौजूद सामीन खुद करें भाई।
2: अच्छा खलील साहब ये बताएं कि माहौल कैसा था वहाँ का?
1: भाई गाने का इंतखाब होते ही लाइट मुधम हुई और रंगारंग रोशनियां झल उठी, अचानक ऐसे लगा जैसे हम किसी छोटे कंसर्ट हॉल में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये था कि स्टेज पर कोई मशहूर गुलकार नहीं बल्कि हम खुद थे।
0: और आपकी महफिल में पांचों लोगों ने गाना गाया?
1: जी जी जी बिल्कुल, हम सब ने बारी बारी अपने फन के जौहर दिखाए, तकरीबन 2.5 घंटे ये शौकिया गुलकारी चलती रही। अलबत्ता हमारे एक साथी ने ऐसे भी गाने गाए कि जिनको देख के पता चल रहा था कि भाई वाकई प्रोफेशनल और पेशावराना अंदाज में गाने गा रहे हैं।
2: जापान में कराओके सिर्फ नौजवानों का शौक है क्या?
1: नहीं, मुख्तलिफ उम्र के लोग इससे लुत्फानंदोज होते हैं, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ आप ग्रुप के बजाय अकेले भी कराओके कर सकते हैं, बाज जगहों पर एक शख्स के लिए भी छोटे कमरे बने हुए थे।
0: यानी मेरी तरह आवाज अगर अच्छी ना हो तो शुक्र है सामिन तो कम होंगे।
1: बिल्कुल, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। मकसद लाजमन अच्छा गुलकार बनना नहीं बल्कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और तफरीह करना है जिसमें वो सब मिलकर एक गाना गाते हैं।
2: आपने पाकिस्तान में भी महफिल मौसीकी देखी है ना, वहाँ और जापान के कराओके में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या महसूस हुआ?
1: हमारे यहाँ महफिल में अमूमन गुलकार और सामीन अलग अलग होते हैं, कोई अच्छा गाने गाने वाला गाता है और बाकी लोग सुनते हैं, दाद देते हैं और फरमाइश करते हैं, लेकिन कराओके में ये फर्क खत्म हो जाता है, यहाँ आप खुद गुलकार भी हैं और सामे भी।
0: यानी पाकिस्तान में महफिल जमाओ और जापान में कराओके जमाओ।
1: जी जी बिल्कुल ऐसा ही समझ लें।
2: एक और फर्क शायद ये है कि पाकिस्तान में गाना अक्सर किसी खास खुशी के महफिल का हिस्सा बनता है, जबकि जापान में कराओके खुद दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का अमूमी प्रोग्राम बन चुका है।
1: बिल्कुल, आप दोस्तों के साथ जाएं, एक निजी कमरा लें, अपनी पसंद के गाने मुंतखब करें और बारी बारी माइक पकड़ते जाएं, और चूंकि कमरा अलग होता है इसलिए पूरे मोहल्ले को आपकी गायकी सुनना भी जरूरी नहीं।
0: واہ واہ بھائی، ہمارے ہاں تو ممکن ہے شوقیہ فنکار گانا شروع کر دے تو پوری گلی کا سکون چوپٹ.
1: جاپان میں کم از کم میرے تجربے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، شکر ہے.
2: خلیل صاحب، آپ کے لیے اس تجربے کی سب سے دلچسپ بات کیا تھی؟
1: یہ کہ میں نے دریافت کیا کہ گانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیشور گلوکار ہی ہوں. دوست ہوں، ایک مائک ہو، اسکرین پر بول ہوں اور موسیقی چل رہی ہو، تو ہر شخص جو ہے کم از کم چند منٹ کے لیے گلوکار بن سکتا ہے.
0: ارے واہ، اب یہ بتائیے کہ آپ کی گائیکی سن کر باقی چار لوگوں نے دوبارہ آپ کو بلانے کا فیصلہ کیا یا نہیں؟
1: اس کے لیے تو آپ کو اگلی کراوکے پارٹی کا انتظار کرنا پڑے گا.
2: یعنی جاپان نے ایک اور پاکستانی کو گلوکار بنا دیا.
1: جی، کم از کم کراوکے کے کمرے کی حد تک تو بالکل.
0: واہ کیا خوب منظر کشی کی. سامعین، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کراوکے میں ہم کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے خود گانے گا لیے، خلیل صاحب سن بھی لیے، سنا بھی دیے، لیکن پروگرام کا وقت گزرتا جا رہا ہے، سامعین کو بھی گیت سنوانا ہے.
2: موسم خزاں بھی تو گزرتا جا رہا ہے وسیمہ، اسی پر گیت سنیں.
0: ارے ہاں، جیسے پاک و ہند میں خلیل صاحب بہار پسندیدہ موسم ہوتا ہے، لیکن جاپان میں تو خزاں کو بھی پسند کیا جاتا ہے،
2: کیونکہ اس کی خصوصیت رنگ بدلتے پتے اور شفاف آسمان جو ہے.
1: ایک اور خصوصیت خزاں کی سبزیاں بھی ہیں.
2: ہارونے صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ خزاں کی سبزیوں کا ذکر ہو تو شکرکندی اور حلوہ کدو جیسی موسمی سبزیاں یاد آ جاتی ہیں.
1: ان سبزیوں سے یہاں مٹھائی بھی بنتی ہے، لوگ خزاں میں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
0: ارے واہ، جیسے آپ کراوکے سے لطف اندوز ہوئے. ویسے ہارونے صاحبہ کہتی ہیں ان کے کام کی جگہ پر خزاں میں شکرکندی کے یوکان، یعنی ایک خاص قسم کی جاپانی برفی سمجھ لیں، بکتی ہے اور کئی گاہک ہر سال اس کا انتظار کرتے ہیں.
1: یعنی جاپان میں لوگ خزاں کی سبزیاں صرف پکوان نہیں بلکہ سویٹ ڈش کے طور پر بھی پسند کرتے ہیں.
2: جی، اور آج اسی مناسبت سے گیت سنتے ہیں.
0: اس کا عنوان ہے کریزی پارٹی نائٹ پمپکن نو گیاکوشو. اس کو گلوکارہ کیری پامیو پامیو نے گایا ہے.
2: جاپانی پاپ آرٹسٹ کیری پامیو پامیو دلکش فیشن، موسیقی اور منفرد ویڈیوز کے لیے بڑی معروف ہیں.
1: 2011 میں ڈیبیو کے بعد انہوں نے دنیا بھر میں پرفارم کر کے جاپانی پاپ کلچر کا منفرد انداز بین الاقوامی شائقین تک پہنچایا.
0: اور آج ہم جو گیت سنوا رہے ہیں وہ 2015 میں ریلیز ہوا تھا. یہ ہیلوئن سانگ کیری پامیو پامیو کا رنگین اور منفرد انداز اجاگر کرتا ہے.
2: ہارونے چان کے مطابق آٹم ویجیٹیبل اور اسے گانے کے درمیان یہ تعلق ہے کہ خزاں میں سڑکوں پر ہیلوئن کی آرائش ہوتی ہے اور پمپکن اس موسم کی سب سے جانی پہچانی علامتوں میں سے ایک ہے.
1: ہارونے چان کو خزاں، ہیلوئن اور کدو کی یاد دلاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ گانا خزاں کے تھیم کے لیے منتخب کیا ہے.
0: اس گیت کے بولوں میں ہیلوئن، بھوتوں کے ساتھ رقص اور پارٹی کا ذکر ہے، تو آئیے سنتے ہیں.

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी सामिन, गीत आपने सुना, कैसा लगा? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हम आपके पैगामात का शिद्दत से इंतजार करते हैं। और अब फिर अब हैं सामिन के पैगामात।
2: मेरे पास एक ईमेल है छत्तीसगढ़ भारत से आनंद मोहन बाइन की। उन्होंने यकुम जून के प्रोग्रामों की रिसेप्शन रिपोर्ट रवाना की है। इसके मुंदरिजात के मुताबिक उन्होंने भीलाई भारत से नशरियात सुनी, खबरें और जापानी बोलचाल का प्रोग्राम सुना। फिर लिखते हैं कि रिसेप्शन तसल्ली बख्श थी। उनकी फरमाइश है कि मुझे जापानी बोलचाल की किताब और NHK के प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक तहफ भेजें। उन्होंने अपना मुकम्मल एड्रेस भी तहरीर किया है।
0: आनंद मोहन बाइन साहब, पैगाम का बेहद शुक्रिया। आप हमारी प्रोग्राम गाइड, प्रोग्रामों की तफसील और दीगर तफसीलात हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर देख सकते हैं।
1: जापानी बोलचाल की मुकम्मल किताब भी हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर PDF फॉर्म में मौजूद है, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब एक और पैगाम।
2: अबसिन पाकिस्तान के मीरपुर खास से मीर अल्ला यार खान तालपुर का खत है, जो उन्होंने NHK वर्ल्ड की उर्दू सर्विस के डाक के बराए रास पते पर रवाना किया है। लिखते हैं, मैं रेडियो जापान का पुराना लिस्नर हूं, कई सालों से प्रोग्रामों से दूर रहा। अब दोबारा आपकी उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुनना चाहता हूं। आप मेरी मालूमात के लिए मुझे प्रोग्राम गाइड और दीगर मालूमती लिटरेचर मेरे डाक के पते पर रवाना कीजिए, ताकि मुझे प्रोग्राम सुनने में आसानी हो।
0: मीर अला यार खान तालपुर साहब, महफिल में आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपने बराह रास्त डाक भेजी, इस मेहनत के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। ताहम तकनीकी वजूहात के बायस कराची पाकिस्तान में हमारा पोस्ट बॉक्स अब ख़त्म हो चुका है। इसके बजाय हम अपने सामीन से गुजारिश करते हैं कि वो हमें हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के जरिए अपनी आरा रवाना करें। हमारे होम पेज पर आइए, हम आपसे बस चंद क्लिक की दूरी पर हैं।
1: उसकी ईमेल कैसे करनी है, उसकी तफसील आपको समझ आ जाएगी। हमसे राब्ता पर क्लिक करना है।
2: अब सामीन के लिए पैगाम के, अगर आप जापान में मुकीम हैं, किसी भी शोबे जिंदगी में नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सिलसिला जापान में पाकिस्तानी में आना चाहते हैं, तो हमसे राब्ता कीजिए।
0: पैगामात की बुनियाद पर मुंतखब मेहमानों के साथ हम खुद राब्ता करेंगे।
1: और खलील साहब, सोफिया साहिबा, घड़ी की सुइयां इशारा करने लग गई हैं कि इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है।
0: जाने से पहले बताते चलें कि सामीन, आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के जरिए हमारी खबरें सुन सकते हैं, प्रोग्राम सुन सकते हैं और अपनी आरा भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम मुंतजर हैं।
2: होम पेज है nhk.jp/urdu।
1: सामिन, एक बार फिर सुन लीजिए, होम पेज nhk.jp/urdu। आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ ऑडियो या वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं। हम आपके ढेरों पैगामात के मुंतजर रहेंगे। अब NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस के मेज़बानों वसीमा आबिद, खलील शेराजी और सोफिया जमशेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 अक्टूबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के रक्षा उपमंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कोयारी ताकाशी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अंतर्देशीय क्षेत्र से पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर मिसाइलें दागी। माना जाता है कि ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट और जापान सागर के पास के जल क्षेत्र में गिरी। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 9:19 पर दागी गई पहली मिसाइल ने लगभग 20 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय। कोयारी ने बताया कि माना जा रहा है कि दूसरी मिसाइल सुबह करीब 9:36 पर प्रक्षेपित की गई। उसने लगभग 70 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए 910 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय। रक्षा उपमंत्री ने यह भी कहा कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि दूसरी मिसाइल अनियमित पथ पर उड़ सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों के जापानी भूभाग या उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विमानों या जहाजों को हुए नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। कोयारी ने कहा कि उत्तर कोरिया की कई हरकतें, जिनमें बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है, जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये जापानी नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि जापान ने पेइचिंग स्थित दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया से विरोध दर्ज कराते हुए इस हालिया घटना की निंदा की है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रियाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 दिनों के भीतर हुए दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला रविवार को हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस हवाई अड्डे पर एक दिन पहले हुए हमले में 12 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हुती विद्रोहियों ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में रियाद हवाई अड्डे पर हमला किया। हुती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक सरकारी तेल कंपनी की सुविधाओं पर भी हमले किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र को छोड़कर सऊदी अरब जाने वाली उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। खबरों के मुताबिक अराग़ची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और यमन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन देने को तैयार है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब रियाद हवाई अड्डे पर हुए सिलसिलेवार हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संबंधी संघर्ष विराम लागू हो गया है। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, इसका उल्लंघन ना होने पाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि ये घोषणा उनके लिए एक नई खबर थी। रविवार को एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूस की ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमला ना करने के लिए तैयार है और हम रूस से भी इसी तरह की तत्परता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संघर्ष विराम का वास्तविकता में बदलना महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से पूरे दिन यूक्रेनी आसमान पर रूसी ड्रोन मंडराते रहे और हार्किव में ऊर्जा अवसंरचना पर हमला हुआ। ट्रंप यूक्रेन से रूस स्थित तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आग्रह करते आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे हमलों से डीजल की गंभीर कमी हो जाएगी। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक साल बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार शनिवार शाम इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रविवार को इजरायली गोलीबारी में एक गर्भवती महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली शांति योजना के तहत पिछले साल 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ था। हालांकि इजरायली

इसे ना ये दावा करते हुए लगातार रुक रुक कर हमले करती आई है कि हमास समझौते का उल्लंघन करते हुए गुट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 1488 हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों में 450 से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम से कुछ राहत मिली है, लेकिन सुरक्षा या पर्याप्त मानवीय सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति योजना पर प्रगति करने का आह्वान किया। शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी का आह्वान किया गया है, लेकिन इन कदमों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है, जिससे प्रगति की संभावना कम दिख रही है। नेपाल में एक बार फिर अचानक भीषण बाढ़ आई है, जिसमें 5 लोग लापता हो गए हैं। नेपाल की सेना प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चला रही है। सेना का कहना है कि भूस्खलन से निकली मिट्टी और रेत के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद रविवार को मध्यवर्ती क्षेत्र गोरखा में मृदा स्खलन की घटना पेश आई। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी फुटेज में पहाड़ों से घिरी एक घाटी में नदी का मटमैला पानी तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाली अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आह्वान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 40 मकान और कई पुल बह गए और एक पनबिजली घर को नुकसान पहुंचा है। सेना का कहना है कि उसने अब तक 40 से अधिक लोगों को बचा लिया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरीकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरीकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनों कुराई माचमास का 15分 कुराई देस। वाकरिमास्ता।
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain। Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha,
2: Dono kurai machimasu ka?
0: Kitni der intezar karna hai?
1: Karmchari ne uttar diya,
4: 15分くらいです。
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
4: वाकरिमास्ता।
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरीकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
3: すごい होममोनो नो शुरीकेन दा।
0: वाह असली शुरीकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
4: आनो मतो नी नागेते कुदासाई।
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरीकेन से निशाना लगाया।
3: ए,
0: ये लो।
3: अरे
0: गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरीकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमास का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
5: दोनों कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
5: माचिमास का
1: बना है क्रिया
5: माच
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
5: माचिमास
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
5: दोनों कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनों कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
5: माचिमास का どのくらい待ちますか?
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
6: すみません。あとどのくらいかかりますか? 20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
6: すみません आतो दोनो कुराई का करीमास का,
0: माफ कीजिए और कितनी देर लगेगी।
5: すみません
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
5: आतो
1: का अर्थ है और या बाकी,
5: ककारीमास
0: है क्रिया
5: ककारु
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
4: 20分くらいです।
0: लगभग 20 मिनट।
5: 20分
1: का अर्थ है 20 मिनट और
5: कुराई
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: दोनों कुराई का करीमास का? आतो दोनों कुराई का करीमास का?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
5: आरुकु
1: और उसका मास रूप है
5: आरुकिमास, आरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जुगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
5: हुं।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
5: गोफुन
1: और 10 मिनट है
5: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
5: जु
0: के बाद
5: हुं
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
5: गोफुन,
1: 10 मिनट है
5: जुपुन,
1: 15 मिनट है
5: जुगोफुन
1: और 20 मिनट है
5: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
5: जिकांग।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
5: जिकांग
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
5: इचिजिकांग
0: और 2 घंटे हैं
5: निजिकांग।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
5: योजिकांग,
1: 7 घंटे है
5: शिजिकांग
1: और 9 घंटे है
5: खुजिकांग।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकान सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
5: सांजुपुन
1: की जगह
5: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं। इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
5: इचिजिकान हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ！
4: あの的に投げてください。
3: えい！
6: ああ、落ちちゃった。
2: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहां ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 अक्टूबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के रक्षा उपमंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कोयारी ताकाशी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अंतर्देशीय क्षेत्र से पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर मिसाइलें दागी। माना जाता है कि ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट और जापान सागर के पास के जल क्षेत्र में गिरी। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 9:19 पर दागी गई पहली मिसाइल ने लगभग 20 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय। कोयारी ने बताया कि माना जा रहा है कि दूसरी मिसाइल सुबह करीब 9:36 पर प्रक्षेपित की गई। उसने लगभग 70 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए 910 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय। रक्षा उपमंत्री ने यह भी कहा कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि दूसरी मिसाइल अनियमित पथ पर उड़ सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों के जापानी भूभाग या उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विमानों या जहाजों को हुए नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। कोयारी ने कहा कि उत्तर कोरिया की कई हरकतें, जिनमें बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है, जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये जापानी नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि जापान ने पेइचिंग स्थित दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया से विरोध दर्ज कराते हुए इस हालिया घटना की निंदा की है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रियाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 दिनों के भीतर हुए दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला रविवार को हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस हवाई अड्डे पर एक दिन पहले हुए हमले में 12 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हुती विद्रोहियों ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में रियाद हवाई अड्डे पर हमला किया। हुती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक सरकारी तेल कंपनी की सुविधाओं पर भी हमले किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र को छोड़कर सऊदी अरब जाने वाली उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। खबरों के मुताबिक अराग़ची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और यमन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन देने को तैयार है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब रियाद हवाई अड्डे पर हुए सिलसिलेवार हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संबंधी संघर्ष विराम लागू हो गया है। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, इसका उल्लंघन ना होने पाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि यह घोषणा उनके लिए एक नई खबर थी। रविवार को एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूस की ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमला ना करने के लिए तैयार है और हम रूस से भी इसी तरह की तत्परता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संघर्ष विराम का वास्तविकता में बदलना महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से पूरे दिन यूक्रेनी आसमान पर रूसी ड्रोन मंडराते रहे और हार्किव में ऊर्जा अवसंरचना पर हमला हुआ। ट्रंप यूक्रेन से रूस स्थित तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आग्रह करते आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे हमलों से डीजल की गंभीर कमी हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक साल बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार शनिवार शाम इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रविवार को इजरायली गोलीबारी में एक गर्भवती महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली शांति योजना के तहत पिछले साल 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ था। हालांकि इजरायली सेना ये दावा करते हुए लगातार रुक रुक कर हमले करती आई है कि हमास समझौते का उल्लंघन करते हुए गुट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 1488 हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों में 450 से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम से कुछ राहत मिली है, लेकिन सुरक्षा या पर्याप्त मानवीय सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति योजना पर प्रगति करने का आह्वान किया। शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी का आह्वान किया गया है, लेकिन इन कदमों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है, जिससे प्रगति की संभावना कम दिख रही है। नेपाल में एक बार फिर अचानक भीषण बाढ़ आई है, जिसमें 5 लोग लापता हो गए हैं। नेपाल की सेना प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चला रही है। सेना का कहना है कि भूस्खलन से निकली मिट्टी और रेत के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद रविवार को मध्यवर्ती क्षेत्र गोरखा में मृदा स्खलन की घटना पेश आई। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी फुटेज में पहाड़ों से घिरी एक घाटी में नदी का मटमैला पानी तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाली अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आह्वान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 40 मकान और कई पुल बह गए और एक पनबिजली घर को नुकसान पहुंचा है। सेना का कहना है कि उसने अब तक 40 से अधिक लोगों को बचा लिया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरीकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरीकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनों कुराई माचमस का
3: 15 कुराई देस।
2: वाकरिमास्ता।
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
4: えい
2: ああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain। Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha,
2: dono kurai machimasu ka,
0: kitni der intezar karna hai।
1: Karmchari ne uttar diya,
3: 15 फुन कुराई देस,
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
2: वाकरिमास्ता,
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरीकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
4: すごい होममोनो नो शुरीकेन दा,
0: वाह असली शुरीकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
5: अनो मतो नी नागेते कुदासाई,
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरीकेन से निशाना लगाया,
4: ए
0: ये लो।
2: अरे
0: गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरीकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमस का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
6: दोनों कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
6: माचेमास का
1: बना है क्रिया
6: माच
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
6: माचेमास
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
6: दोनों कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय, दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है, ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनों कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
6: माचिमास का どのくらい待ちますか？
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
7: すみません。あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
7: すみません आतो दोनो कुराई का करिमास का,
0: माफ कीजिए और कितनी देर लगेगी।
6: すみません
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
6: आतो
1: का अर्थ है और या बाकी,
6: ककारिमास
0: है क्रिया
6: ककार
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
5: 20 कुराई देस,
0: लगभग 20 मिनट।
6: 20
1: का अर्थ है 20 मिनट और
6: कुराई
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
6: दोनों कुराई काकारिमास का आतो दोनों कुराई काकारिमास का।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
6: अरुकु
1: और उसका मास रूप है
6: अरुकिमास, अरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
8: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जुगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
6: हुं।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
6: गोफुन
1: और 10 मिनट है
6: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
6: जु
0: के बाद
6: हुं
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
6: गोफुन,
1: 10 मिनट है
6: जुपुन,
1: 15 मिनट है
6: जुगोफुन
1: और 20 मिनट है
6: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
6: जिकांग।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
6: जिकांग
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
6: इचिजिकांग
0: और 2 घंटे हैं
6: निजिकांग।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
6: योजिकांग,
1: 7 घंटे है
6: शिजिकांग
1: और 9 घंटे है
6: खुजिकांग।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकान सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
6: सांजुपुन
1: की जगह
6: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं, इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
6: इचिजिकान हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どのくらい待ちますか？
3: 15分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい、本物の手裏剣だ。
5: あの的に投げてください。
4: えい。
7: ああ、落ちちゃった。
9: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहां ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

हमला किया गया। हुकाम के मुताबिक हफ्ते के हमले में 12 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हूसी बागियों ने इतवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के फिजाई हमलों के जवाब में रियाज के हवाई अड्डे पर हमला किया है। हूसियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के एक और बैन अल्कवामी हवाई अड्डे और सरकारी तेल कंपनी की तंसीबात पर भी हमले किए हैं। वो खबरदार कर रहे हैं कि मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना के हवाई अड्डों और फिजाई हदूद के लिए परवाजों के सिवा सऊदी अरब के लिए परवाजें महफूज नहीं हैं। ईरान के सरकारी इजरायली ब्लॉग ने खबर दी है कि वजीर खारजा अब्बास इराकची ने इतवार को अपने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद से फोन पर बात की। इतलात के मुताबिक इराकची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और यमन के दरमियान बातचीत के लिए दरकार जरूरी तआवुन फराहम करने को तैयार है। हवाई अड्डे पर होने वाले हमलों के इस सिलसिले में सऊदी अरब की जानिब से सख्त रद्द अमल की तवक्को है। कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा है।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, फौरी तौर पर मुअसर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों फरीकों ने तवानाई की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी मीडिया को बताया कि यह ऐलान उनके लिए खबर है। इतवार को एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूसी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने से बाज रहने के लिए तैयार है और हम रूस की तरफ से इसी चीज के लिए तैयार होने पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि तवानाई की जंगबंदी हकीकत बन जाए। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यूक्रेनी फजा मुसलसल रूसी ड्रोन्स की जद में रही है और ये कि खारकीफ में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप यूक्रेन से रूस में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के हमलों से डीजल की शदीद किल्लत हो जाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के एक साल बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते की शाम इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और इतवार को इसराइली फायरिंग में एक हामिला खातून समेत 8 दीगर जख्मी हो गए। 2 साल की लड़ाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में एक अमन मंसूबे ने जंगबंदी का मुआहदा तश्कील दिया जो गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिस हुआ। तहम इसराइली फौज वक्फे वक्फे से हमले करती रहती है और ये दावा करती है कि हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तंजीम दोबारा मुनज़म करने की कोशिश कर रही है। गजा के सेहत हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे जंग बंदी शुरू होने के बाद से अब तक हलाक शुदगान की मजमुई तादाद 1488 हो गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 450 से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान में कहा कि जंगबंदी से कुछ राहत मिली है लेकिन अभी तक तहफ्फुज़ या मुनासिब इंसानी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन मंसूबे पर पेशरफ्त करें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करने और गजा से इसराइली फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। हम इन इकदाम पर दोनों फरीकों का मौकफ मुतसाद है, जिसकी वजह से पेशरफ्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नेपाल में अचानक आए एक और बड़े सैलाब से 5 अफराद लापता हो गए हैं। नेपाली फौज मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। फौज का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती जिले गोरखा में मट्टी का तोदा गिरने के बाद मट्टी और रेत ने एक दरिया का बहाव रोक दिया। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज में देखा जा सकता है कि दरिया का कीचड़ आलूद पानी पहाड़ों से घिरी एक वादी का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। नेपाली हुकाम दरिया के किनारे रहने वालों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। मकामी जराए

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 अक्टूबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के रक्षा उपमंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कोयारी थाकाशी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अंतर्देशीय क्षेत्र से पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर मिसाइलें दागी। माना जाता है कि ये मिसाइलें देश के पूर्वी तट और जापान सागर के पास के जल क्षेत्र में गिरी। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 9:19 पर दागी गई पहली मिसाइल ने लगभग 20 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय। कोयारी ने बताया कि माना जा रहा है कि दूसरी मिसाइल सुबह करीब 9:36 पर प्रक्षेपित की गई। उसने लगभग 70 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हुए 910 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय। रक्षा उपमंत्री ने यह भी कहा कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि दूसरी मिसाइल अनियमित पथ पर उड़ सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों के जापानी भूभाग या उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विमानों या जहाजों को हुए नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। कोयारी ने कहा कि उत्तर कोरिया की कई हरकतें, जिनमें बार बार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है, जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये जापानी नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि जापान ने पेइचिंग स्थित दूतावास के माध्यम से उत्तर कोरिया से विरोध दर्ज कराते हुए इस हालिया घटना की निंदा की है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रियाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 दिनों के भीतर हुए दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला रविवार को हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस हवाई अड्डे पर एक दिन पहले हुए हमले में 12 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हुती विद्रोहियों ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उन्होंने सऊदी अरब द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में रियाद हवाई अड्डे पर हमला किया। हुती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक सरकारी तेल कंपनी की सुविधाओं पर भी हमले किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मक्का और मदीना के पवित्र शहरों के हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र को छोड़कर सऊदी अरब जाने वाली उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। खबरों के मुताबिक अराग़ची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और यमन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन देने को तैयार है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब रियाद हवाई अड्डे पर हुए सिलसिलेवार हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संबंधी संघर्ष विराम लागू हो गया है, दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, इसका उल्लंघन ना होने पाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि ये घोषणा उनके लिए एक नई खबर थी। रविवार को एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूस की ऊर्जा अवसंरचनाओं पर हमला ना करने के लिए तैयार है और हम रूस से भी इसी तरह की तत्परता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संघर्ष विराम का वास्तविकता में बदलना महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से पूरे दिन यूक्रेनी आसमान पर रूसी ड्रोन मंडराते रहे और हार्किव में ऊर्जा अवसंरचना पर हमला हुआ। ट्रंप यूक्रेन से रूस स्थित तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आग्रह करते आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे हमलों से डीजल की गंभीर कमी हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू होने के एक साल बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार शनिवार शाम इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और रविवार को इजरायली गोलीबारी में एक गर्भवती महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली शांति योजना के तहत पिछले साल 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ था। हालांकि इजरायली सेना ये दावा करते हुए लगातार रुक रुक कर हमले करती आई है कि हमास समझौते का उल्लंघन करते हुए गुट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही संघर्ष विराम लागू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 1488 हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों में 450 से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम से कुछ राहत मिली है, लेकिन सुरक्षा या पर्याप्त मानवीय सहायता अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति योजना पर प्रगति करने का आह्वान किया। शांति योजना के दूसरे चरण में हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी का आह्वान किया गया है, लेकिन इन कदमों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है, जिससे प्रगति की संभावना कम दिख रही है। नेपाल में एक बार फिर अचानक भीषण बाढ़ आई है, जिसमें 5 लोग लापता हो गए हैं। नेपाल की सेना प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चला रही है। सेना का कहना है कि भूस्खलन से निकली मिट्टी और रेत के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद रविवार को मध्यवर्ती क्षेत्र गोरखा में मृदा स्खलन की घटना पेश आई। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी फुटेज में पहाड़ों से घिरी एक घाटी में नदी का मटमैला पानी तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाली अधिकारी नदी के किनारे रहने वाले निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने का आह्वान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 40 मकान और कई पुल बह गए और एक पनबिजली घर को नुकसान पहुंचा है। सेना का कहना है कि उसने अब तक 40 से अधिक लोगों को बचा लिया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरीकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरीकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनों कुराई माचमस का 15 कुराई देस। वाकरिमास्ता।
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain। Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha,
2: dono kurai machimasu ka,
0: kitni der intezar karna hai।
1: Karmchari ne uttar diya,
4: 15 फुन कुराई देस,
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
2: वाकरिमास्ता,
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरीकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
3: सुगोई होममोनो नो शुरीकेन दा,
0: वाह असली शुरीकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
4: अनो मतो नी नागेते कुदासाई,
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरीकेन से निशाना लगाया,
3: ए
0: ये लो।
3: अरे
0: गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरीकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमस का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
5: दोनों कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
5: माचिमास का
1: बना है क्रिया
5: माच
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
5: माचिमास
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
5: दोनों कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय, दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है, ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनों कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
5: माचिमास का どのくらい待ちますか？
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
6: すみません。あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
6: सुमिमासे, आतो दोनो कुराई का करीमास का,
0: माफ कीजिए और कितनी देर लगेगी।
5: सुमिमासेन
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
5: आतो
1: का अर्थ है और या बाकी,
5: काकारीमास
0: है क्रिया
5: काकारु
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
4: 20 फुन कुराई देस,
0: लगभग 20 मिनट।
5: 20 फुन
1: का अर्थ है 20 मिनट और
5: कुराई
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: दोनों कुराई काकारीमासु का, आतो दोनों कुराई काकारीमासु का।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
5: आरुकु
1: और उसका मास रूप है
5: आरुकिमास, आरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どのくらい歩きますか?
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जूगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
5: हुँ।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
5: गोफुन
1: और 10 मिनट है
5: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
5: जू
0: के बाद
5: हुँ
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
5: गोफुन,
1: 10 मिनट है
5: जुपुन,
1: 15 मिनट है
5: जूगोफुन
1: और 20 मिनट है
5: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
5: जिकांग।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
5: जिकांग
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
5: इचिजिकांग
0: और 2 घंटे हैं
5: निजिकांग।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
5: योजिकांग,
1: 7 घंटे है
5: शिजिकांग
1: और 9 घंटे है
5: खुजिकांग।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकान सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
5: सांजुपुन
1: की जगह
5: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं। इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
5: इचिजिकान हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: दोनों कुराई मच मच का 15 कुराई देस वाकरी मस्ता
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
4: あの的に投げてください!
6: えい!
2: ああ、 落ちちゃった。 マイクと一緒にポップカルチャー!
1: अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहाँ ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: वर्ल्ड रेडियो जापान टोक्यो।

0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, फौरी तौर पर मुअसर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों फरीकों ने तवानाई की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, इसकी खिलाफवर्जी ना की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी मीडिया को बताया कि यह ऐलान उनके लिए खबर है। इतवार को एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूसी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने से बाज रहने के लिए तैयार है और हम रूस की तरफ से इसी चीज के लिए तैयार होने पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि तवानाई की जंगबंदी हकीकत बन जाए। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यूक्रेनी फजा मुसलसल रूसी ड्रोन्स की जद में रही है और ये कि खारकीफ में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप यूक्रेन से रूस में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के हमलों से डीजल की शदीद किल्लत हो जाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के एक साल बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते की शाम इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और इतवार को इसराइली फायरिंग में एक हामिला खातून समेत 8 दीगर जख्मी हो गए। 2 साल की लड़ाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में एक अमन मंसूबे ने जंगबंदी का मुआहदा तश्कील दिया जो गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिस हुआ। तहम इसराइली फौज वक्फे वक्फे से हमले करती रहती है और ये दावा करती है कि हमास मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए अपनी तंजीम दोबारा मुनज़म करने की कोशिश कर रही है। गजा के सेहत हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे जंगबंदी शुरू होने के बाद से अब तक हलाक शुदगान की मजमुई तादाद 1488 हो गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 450 से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। अक्वा मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान में कहा कि जंगबंदी से कुछ राहत मिली है लेकिन अभी तक तहफ्फुज़ या मुनासिब इंसानी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन मंसूबे पर पेशरफ्त करें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करने और गजा से इसराइली फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। हम इन इकदाम पर दोनों फरीकों का मौकफ मुतसाद है, जिसकी वजह से पेशरफ्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नेपाल में अचानक आए एक और बड़े सैलाब से 5 अफराद लापता हो गए हैं। नेपाली फौज मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। फौज का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती जिले गोरखा में मट्टी का तोदा गिरने के बाद मट्टी और रेत ने एक दरिया का बहाव रोक दिया। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज में देखा जा सकता है कि दरिया का कीचड़ आलूद पानी पहाड़ों से घिरी एक वादी का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। नेपाली हुकाम दरिया के किनारे रहने वालों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि तकरीबन 40 मकानात और कई पुल बह गए और पानी से बिजली बनाने वाली एक तनसीब को नुकसान पहुंचा है। फौज का कहना है कि उसके दस्तों ने अब तक 40 से ज्यादा अफराद को बचा लिया है।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के वजीर ममलिकत बराए दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम अज कम 2 बैलिस्टिक मेजाइल दागे। उन्होंने बताया कि शुमाली कोरिया ने अपने अंदरूनी इलाके से शुमाल मशरक और मशरक की तरफ मेजाइल दागे हैं। बावर किया जाता है कि वो मुल्क के मशरकी साहिल और बहिरे जापान के करीबी पानियों में गिरे। सऊदी अरब में हुक्काम का कहना है कि सऊदी दारुलहुकूमत रियाज के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर 2 दिनों में होने वाले दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। यमन में हूसी बागियों का कहना है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है। इसके साथ ही एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।